वाले ये कलाकार ना होते तो शायद भारतीय शास्त्रीय संगीत सार्वजनिक

0: आपका था, सारा ही की ओर आकर्षित हो गया। तेरा की शिक्षा का क्या हुआ?
1: शिक्षा हुई, एक दिन गया था स्कूल और उन दिनों में ये मास्टर लोग बच्चों को मारते थे, तो मेरी भी कुछ गलती हो गई, तो मास्टर ने मुझे बुला के इसी हाथ में लेक्चर में एक पेंसिल यहाँ रख के दबाना शुरू किया और मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी गीत से बहुत नाखुश है और मैंने घर जाके पिताजी से कहा कि मैं नहीं जाऊँगा स्कूल और फिर जब इन्हें बताया कि मेरी